0: होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: होठों पे सच्चाई रहती है।
2: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था।
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो, स्टूर ईमेल नर info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो.

एंड मेरी दुनिया है तुझ में कहीं और तेरे बिना मैं तो कुछ भी नहीं। सोनू निगम एंड हाँ सोनू निगम के साथ आप सुने कविता कृष्णमूर्ति से फिल्म वास्तव का गीत और यह है उजाला रेडियो। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप देखें उजाला।

लता जी के साथ अमित कुमार की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म रोमांस से निकाला हवा। और इसी यादें पर एक और गीत आप सुनेंगे, उदित नारायण नंद अलका जी से।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Formaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम और आलमेर से लड़कन गयाधर और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 80 साल की आयु में तख्त यार औत लड़कन रवीन और विजय गयाधर की माँ रोशिता गयाधर पंचू की सास प्रीति गयाधर और रैना गयाधर के आजी रिनिया हरद्वार और राजेश बोंदालापिदिया की बहन अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु अम्स्टर्डम के ओंजे लीफ फ्राउ गास्टहाउस ओस्ट में हो गई है। स्वर्गीय श्री हरी जवाहिर और स्वर्गीय नेल बोंदालापिदिया के बेटी थी और सूरीनाम और नीदरलैंड में अंडरवाइजरेस थी। अम्स्टर्डम और आलमेर से लड़कन गयाधर और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार की सुबह 80 साल की आयु में तख्त यार औत लड़कन रवीन और विजय गयाधर की माँ रोशिता गयाधर पंचू की सास प्रीति गयाधर और रैना गयाधर के आजी रीनिया हरद्वार और राजेश बोंदालापिदिया के बहन अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु ओंजे लीफ फ्राउ गास्टहाउस ओस्ट में हो गई है। जीवित में नीदरलैंड और सूरीनाम में भी अंडरवाइजरेस थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज सोमवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटफार्ड सेंट्रम वेस्खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवैग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 2 बजे वोन्सडाग आस्टांड 2 यूर किए जाएंगे। वेस्खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवैग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्ड फुरजोरखिंग परिवार गयाधर और परिवार जवाहिर के दुख में शामिल है।

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalger heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wel heet, door Shadi Hone Wel heet. Ja, Kizika Moendes als kaar heet. Ujala Radio per vermaagst aap deze te heen. Pandra vermaagst voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों। तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

तेरा चेहरा जब नजर आए, अरिजीत सिंह की आवाज और फिल्म का नाम सनम तेरी कसम। आपके साथ साथ और हजारों लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो को।

तुम्हारी आरजू के पलकों में कोई पलता है, तुम्हारी आरजू के साये में हाँ कोई पलता है। मोहित चौहान की आवाज में गीत को आप सुनिए, श्वेता पंडित हिस्सा लेंगे। इट्स यू आर उजाला रेडियो।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अरे, सुन, वाक्तिकर, हाँ, जली ब्रासा फेस्ट, येस, फाज 1 इज volledig uitverkocht, sold out, haha, हम बोलत रहली तुसे तो, heb jij nog geen tickets, dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2, te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldi kermousi, jali ghume, jali ब्रासा फेस्ट, ha, 100 jali ब्रासा फेस्ट. Bestel nu via www.brasafest.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl. info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

ये है उजाला रेडियो कॉफी चाय मेरा शो अभी शुरू होने वाला है उजाला रेडियो के जरिए सुनते रहना ये है मुक्कसिम एक्सप्रेस एक्सप्रेस म्यूजिक फॉर्मेशन के साथ ook aanwezig op Brazzafest 29 en 30 augustus in GIA Event Center.

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नहमा सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांड ज़ादादाग नहीं नित्वेंद्र एंड ज़ोंडग डेर्टग अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर हाँ तू मौसी सुन रहे हैं भीतर जिया इवेंट सेंटर दनाग में आप सुनने को जा रहे हैं नहमा इस बार प्रोग्राम में हम ला रहे हैं अफीशा की आवाज़ में ओक अवेजक और ब्राज़ा फेस्ट

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम और अल्मेर से लड़कन गयाधर और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 80 साल के आयु में तख्त यार औत लड़कन रवीन और विजय गयाधर की माँ रोशिता गयाधर पंचू की सास प्रीति गयाधर और रैना गयाधर के आजी रिनिया हरद्वार और राजेश बोंदालापिडिया की बहन अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु अम्स्टर्डम के ओंज लीफ फ्राउ गास्टहाउस ओस्ट में हो गई है। स्वर्गीय श्री हरि जवाहिर और स्वर्गीय नेल बोंदालापिडिया के बेटी थी और सूरीनाम और नीदरलैंड में ऑंडरवेज रेस्ट थी। अम्स्टर्डम और अल्मेर से लड़कन गयाधर और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार की सुबह 80 साल के आयु में तख्त यार औत लड़कन रवीन और विजय गयाधर की माँ रोशिता गयाधर पंचू की सास प्रीति गयाधर और रैना गयाधर के आजी रिनिया हरद्वार और राजेश बोंदालापिडिया के बहन अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु ओंज लीफ फ्राउ गास्टहाउस ओस्ट में हो गई है। जीवित में नीदरलैंड और सूरीनाम में भी ऑंडरवेज रेस्ट थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज सोमवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटफार्ड सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवैग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 2 बजे वोन्सदाग आस्तांद 2 यूर किए जाएंगे। वेस्खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्ड फुरजोरखिंग परिवार गयाधर और परिवार जवाहिर के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। आपके लिए नगमों की सौगात लेकर आई हूँ, कुछ सुनी कुछ अनसुनी नगमे। जिंदगी जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है। हम किसी से नफरत करके या किसी का बुरा सोच के शायद अपनी झूठी आना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन मानिए, हमारे अंदर का इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटे, आप हमेशा पुरसुकून रहेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता।

इतनी शक्ति हमें दे न दाता। कुलदीप सिंह की मौसिकी थी और अभिलाष का लिखा तर्ज था। इसी रूहानियत अंदाज में नाथ शरीफ पेश है, तलत महमूद की मखमली आवाज में।

फरिश्तों ने नगमे मुसर्रत के गाए। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने अक्सर मजहबी और भक्ति संगीत से शुरू करते हैं, प्रोग्राम का रुख जरा सा बदल देते हैं। हमने गजल शौकीन के वास्ते गजलें चुने हैं, उम्मीद है आप इन गजलों से लुत्फ उठाएंगे। पहले शेर अर्ज है, फिर से तेरी महफिल में, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ। अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस बस अल्फाज नए लाया हूँ। कभी शाख सब्ज़ व बर्ग पर, कभी गुंचो गुलोहार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ। कभी

दिल छू लेने वाले गजल पेश थी, श्री जगजीत सिंह की आवाज थी, कलाम था शायर अयाज जंसवी का। उसकी आवाज सुन लू तो मिल जाता है सुकून दिल को, देखो तो सही मेरे दर्द का इलाज पर असर होगा या नहीं।

अनमोल नगमा पेश था, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। बेखबर हो गए हैं कुछ लोग हमसे, हमारी जरूरत अब महसूस नहीं करते। कभी कभी बहुत बातें किया करते थे हमसे, अब खैरियत तक मालूम नहीं करते।

फिल्म आनंद में से ये गीत पेश था और ये फिल्म 1971 में रिलीज हुआ था जिसमें राजेश खन्ना का अहम किरदार था। अब लीजिए पेश है मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की आवाजों में ये जुगल गीत।

तेरे सुर और मेरे गीत फिल्म गूंज उठे शहनाई में से लिया है ये गीत और संगीत से सवारे थे संगीतकार वसंत देसाई। अगला गीत सुनवाते हैं, आवाज़ें है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

राहुल देव बर्मन का संगीत रचना और शायर गुलजार का गीत रचना में पेश था ये दो गाना। अब हम आपको हेमंत कुमार से ये नगमा सुनवाते हैं।

मोहब्बत भरी अंदाज में पेश था ये नगमा। मौसिकार एन दत्ता की मौसिकी थी, नगमकार था साहिर लुधियानवी। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का जीत है, इससे हर दिल को गाना पड़ेगा।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो.

सभी सुनने वालों को निशा की तरफ से एक बार फिर अदाब अर्ज। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में मैंने फिल्म मुगले आजम के बारे में इतला किया था। फिल्म मुगले आजम कब, कैसे और किसने बनाई है इसके बारे में बातें की थी। फिल्म मुगले आजम मुगल जमाने की शाही खानदान अकबर की कहानी है।

तो जैसे मैंने कहा, फिल्म मुगले आजम मुगल जमाने की शाही खानदान अकबर की कहानी है। 16वीं सदी की तारीखी वाकयात है, हिस्टोरीज फरहाल है। प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले मैं जरा सा शहंशाह अकबर के बारे में कुछ बयां करूंगी। अकबर की पैदाइश 15 अक्टूबर 1524 में हुई थी। इंडिया के राजा महाराजाओं में अकबर सबसे मशहूर था। हिंदू और मुस्लिम को एक नज़र से देखता था। शहंशाह अकबर के कई बीवियां और कई बच्चे थे। उनके कितने बच्चे छोटी ही उम्र में गुजर जाते थे। शहजादा सलीम महारानी जोधाबाई का बेटा था। सलीम का एक भाई और था मुराद, लेकिन वो हमेशा नशे में रहता था और नशे की सबब से उनकी मौत हो जाता है। पिछले प्रोग्राम में मैं बतलाई थी कि अकबर के कई महलों था। दिल्ली के लाल किला उन्हीं जमाने का है और आगरा से पहले एक छोटा सा शहर है फतेहपुर सिकरी, जहां भी अकबर का महल था। महल चारों तरफ से बना था और बीच में मैदान था जिस पर एक मंच बना हुआ था। हर शाम को शास्त्रीय संगीत होता था। अकबर को तानसेन के संगीत बहुत पसंद था। जब अकबर बादशाह तानसेन के बारे में सुना तो उसे अपने दरबार में गाने के लिए दावत दिया। अकबर ने तानसेन की पहली कॉन्सर्ट में उसे मालामाल कर दिया 2 लाख रुपये से। इंडिया में अभी भी शास्त्रीय संगीत के बारे में जब जिक्र होता है तो तानसेन के नाम पहले लिया जाता है। तानसेन इंडिया की पहचान है, जैसे आगरा की ताजमहल जो शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। शाहजहां शहंशाह अकबर का पोता क्लैन जोन था। तो इसी तरह हमने छोटे रूप में शहंशाह अकबर के बारे में बयां किया, जो 16वीं सदी के मशहूर राजा था और शहजादा सलीम के वालिद।

0: पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में आपने सुना कि सलीम बचपन में शरारत करता था, शाही तौर तरीके की नाफरमानी। अकबर उसे जबरदस्ती फौज में भर्ती करा देता है।
1: बहुधा हम रोजे बद नहीं देखेंगे जिस दिन मुगलों की अजमत सिमट कर एक औबार शहजादे का खिलौना बन जाए। मान सिंह, इसके सर से मां के प्यार का रेशमी आंचल हटाकर इसे लोहे का खौद पहना दो। इसे ले जाओ और जंग के तपते हुए रेगिस्तानों की आंधियों में इसकी परवरिश करो। लो, हम आज मुगलों का मुस्तकबिल तुम्हारे हवाले करते हैं।

0: मैदान जंग से साहेब आलम का जर्रा बख्तर आया है। सलीम, मेरा सलीम,
1: मेरा सलीम।
2: सालों बाद जब सलीम जंग के मैदान से वापस आता है तो उनके लिए दावत की तैयारियां होती है और माँ अपने बेटे को इस तरह से इस्तकबाल करती है।
0: मेरा लाल, मेरा बच्चा।
3: हिंदुस्तान के अजीम शान मलिका।
0: नहीं महाबली, एक माँ, सिर्फ माँ और कुछ नहीं।
3: हमें ये मालूम नहीं था कि महारानी जोधा एक कमजोर माँ के हाथों इतनी मजबूर हो सकती है, अपने विकार को भूल सकती है।
0: उफ महाबली, ये मुगलों की कैसी राजनीति है जो उस माँ को तड़पने भी नहीं देती, रोने भी नहीं देती, जिसके बेटे का लहू इस बेदर्दी से लुटाया जा रहा है।
3: उसे तड़पते दीजिए लेकिन रोने ना दीजिए। वो सब माए भी अगर आपकी तरह रो पड़ी जिनके बच्चे आपके बेटे के साथ मैदान जंग में हैं, तो हिंदुस्तान आंसुओं में डूब जाएगा।
2: फिल्म मुगले आजम की बात कुछ और है। पेशकश और हिदायतकार आसिफ इस फिल्म को सबसे अलग बनाने का मकसद था। एक ऐसी शानदार फिल्म जो पहले कभी नहीं बनी, एक जज्बाती रोमानी भरी कहानी जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। जितना फनकार थे इस फिल्म में सब तैयार थे। मौसिकी और गाने वाले से बात हो चुकी थी लेकिन मुगले आजम के मुहूर्त में बहुत वक्त लगा था। प्रोड्यूसर आसिफ मोहन स्टूडियो में अपना शीश महल बनवा रहा था, राजस्थान की शीश महल का नक्कल। नक्कल शीश महल बनाने में आसिफ को 2 साल इंतजार करना पड़ा। इस नकली शीश महल के शीशे बेल्जियम से लाया गया था। चारों तरफ हर एक के जुबान पर आसिफ के बारे में चर्चा हो रहा था कि उन्होंने एक आलीशान महल मोहन स्टूडियो में बनवा रहा है जहां फिल्म मुगले आजम का शूटिंग होगा। पर इस फिल्म के इंतजार में प्रोड्यूसर नंदलाल जसवंत लाल नेखतेंद्रियम फैफ्तह में मुगले आजम की कहानी पर फिल्म अनारकली बनाया, जिसमें प्रदीप कुमार सलीम के किरदार अदा किया और उन दिनों की अदाकारा बीना राय थी अनारकली। फिल्म अनारकली की मौसकार है से रामचंद्र और कैसे हम भूल सकते हैं लता मंगेशकर की अमर गीत, जैसे कि ये गीत आइए सुनें।

अभी आपने फिल्म अनारकली का गीत सुना। इस गीत से पहले आपने सुना कि प्रोड्यूसर हिदायतकार आसिफ को मुखले आजम बनाने में कई साल लग गया था और इन सालों के दौरान प्रोड्यूसर नंदलाल जसवंतलाल सलीम और अनारकली की कहानी पर फिल्म अनारकली बनाए। ये अक्सर होता है, एक फिल्म जब मशहूर हो जाती है तो उसी तरह की कहानी दोहराने की कोशिश करते हैं फिल्म वालों ने, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन और बाद में शाहरुख खान की डॉन, दिलीप कुमार वैजयंतीमाला की देवदास और शाहरुख खान माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय की फिल्म देवदास। और कितने फिल्में हैं जिसकी कहानी कई बार दोहराई गई है। खैर, हम अपनी कहानी से भटक रहे हैं। आसिफ को जब एहसास हुआ कि सलीम और अनारकली की कहानी पर फिल्म अनारकली बन रहा है तो उन्होंने घबराई नहीं। उसे यकीन था कि उनकी फिल्म मुगले आजम जब पर्दे पर दिखाएगी तो दर्शक 16वीं सदी की दौर में महसूस करेंगी। हर मौजों पर मुगले आजम अलग होगा। इसके डायलॉग, संगीत, लिबास, अदायगी, कैसे हम भूल सकते हैं फिल्म की उस मंजर को जहाँ शहजादा सलीम एक मूर्ति

0: को बेनकाब करता है तो देखते ही उनके दिल से आह निकलता है। एक पल के लिए दिल थम जाता है और सोचता है, काश काश इस मुजस्समे जान आ जाती, इस खूबसूरत मूर्ति से सलीम को मोहब्बत हो जाता है। संग तराशी बेल्थोवर वक्त पर मूरत तैयार नहीं कर पाया था तो एक कनीस को मूरत बनाकर चेहरा पर नकाब डालकर दरबार में पेश करता है। अकबर को भी जब एहसास होता है कि सामने एक जीती जागती लड़की है तो उसकी खूबसूरती से निहायत मुताशर हो जाता है और नाम देता है अनारकली। सुनिए किस तरह शहंशाह अकबर उस जीती जागती मूर्ति की खूबसूरती को तारीफ करता है।
1: तजवीज पेश करने की इजाजत चाहती है।
2: इजाजत है?
1: अफसानों में है कि मुजस्समों की निकाब कुशाइयां तीरों से भी हुआ करती थी।
2: तजवीज पसंद आई शेख, अफसाने हकीकत में बदले जा सकते हैं।
3: दिल्ली लाई हुक्म की तामीर होगी।

शहजादा सलीम सालों बाद वापस आता है, पर बदला नहीं। वो जज्बा, जो शीलापन, मौसिकी से प्यार, शहराना अंदाज में बातें करना, खूबसूरती से प्यार, हाँ, सलीम को इश्क हो जाता है। एक शहजादे को एक कनीज से मोहब्बत हो जाता है।

इस फिल्म का ना भूलने वाले उस मंजर, चांदनी रात में सलीम और अनारकली का रोमानी भरी मिलन, साथ में बड़े गुलाम अली की आवाज, कितना खूबसूरती से हिदायतकार आसिफ इस मंजर को फिल्म

सलीम और अनारकली की बेपनाह गहरी मोहब्बत की अंजाम क्या होता है, अगले हफ्ते की प्रोग्राम में हम बयां करेंगे।

फिल्मी दुनिया पेश था जिसमें हमने सुनहरी दौर का पेशकश और हिदायत का के आसिफ की फिल्म मुगले आजम के बारे में बयां किया। आपने सुना कि उसे इस फिल्म बनाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए आइए सुने तलत महमूद और गीता दत्त की आवाज़ों में ये जुगल गीत।

मोहब्बत भरी अंदाज में पेश था ये गीत। संगीत से सवारे थे हेमंत कुमार और एस हा बिहारी का लिखा तर्ज था। आज भी सुनहरी दौर के गाने सुनने में कितना सुकून मिलता है। आज भी इसमें वही ताजगी है, वही हरियाली है। गीत चाहे डर भरा हो या मोहब्बत भरी।

फिल्म जहां प्यार मिले में से ये गीत पेश था। आवाज थी सुमन कल्याणपुर की, संगीत देने वाले थे शंकर जयकिशन, कलाम था हसरत जयपुरी का। अगला गीत पेश है, आवाज है मेहंदी हसन साहब की।

रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। फिल्म आईना का नगमा पेश था, गायिका थी नयारा नूर। गुलशन महके बरखा बरसे पतझड़ जारा कुछ भी हो, दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम आशिकाना है।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अरे, सुन, वक्त ही कर, हाँ, जली ब्रासा फेस्ट, यस, फाज़ 1 इज volledig uitverkocht, sold out, haha, हम बोलत रहली तुसे तो, हैव यू नो geen tickets, dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldi kermosi, jali ghume, jali ब्रासा फेस्ट, हाँ, 100 jali ब्रासा फेस्ट, bestel nu via www.brasafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

चंदा मैं चांदनी कमाल का गीत पेश था। गायिका थी लता मंगेशकर, संगीत से सजाए थे संगीतकार जयदेव और संगीत रचना था शायर बालकवि बैरागी। भीगी हुई एक शाम की दहलीज पर बैठे हम दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं। एक दौर वो भी था, एक दौर ये भी है।

कमाल का नगमा पेश था मौसिकार रघुनाथ सेठ की मौसिकी थी, नगमकार था शायर कैफी अजमी, गायिका थी अनुराधा पौडवाल।

स्वर की मालिका लता मंगेशकर से पेश था ये नगमा। सख्त हाथों से भी, सख्त हाथों से भी छूट जाती है उंगलियां। रिश्ते रिश्ते ताकत से नहीं मोहब्बत से थामे जाते हैं।

दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, उषा खन्ना ने संगीत से सवारे थे, गीतकार था शायर असद भोपाली। गुजरे है तेरे साथ जो दिन रात, अभी तक आंखों में बसे है वही लम्हात, अभी तक रहने नहीं देता मुझे तन्हा वो तसव्वुर, जिंदा है मेरे दिल में तेरी जात अभी तक, तू नक्श है दिल पर मेरे तस्वीर की सूरत, बदले ही नहीं मेरे हालात अभी तक।

दिल छू लेने वाले नगमा पेश था स्वर की मलिका लता मंगेशकर की आवाज में। मोहब्बत मोहब्बत ढूंढने वालों को नहीं मिलती, मोहब्बत मोहब्बत बांटने वालों को मिला करते हैं।

शे राना अंदाज में पेश था ये नगमा चित्रगुप्त की मौसिकी थी। नगमकार था शायर मजरू सुल्तानपुरी। आज भी इन नगमों में वही ताजगी है, वही हरियाली है। बार बार सुनो तो भी जी नहीं भरता। तो लीजिए एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी साहेब से अगला नगमा।

चांद कितनी दूर था, मोहम्मद रफी साहब से आपने भी ये नगमा सुना। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चराहों ने मेरी नींद उड़ा रही है।